मम समस्त रोग प्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम्

त्रैमासिकज्वर त्र्याहिकज्वर चातुर्थिकज्वर संतापज्वर विषमज्वर तापज्वर माहेश्वर वैष्णवज्वरान् छिन्धि छिन्धि यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत।

भगवते महाहनुमते सर्वग्रहोच्चाटन परबलं क्षोभय क्षोभय सकलबंधन मोक्षणं कुरु कुरु शिरः शूल गुल्मः शूल

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।

हनुमान ऐसे पायक जिनके औ संग लक्ष्मण से भाई जलती यगिन में कूद पड़ेगा को तिन गिन न खाए। अरे मेघनाथ ऐसा पुत्र हमारा और कुंभकर्ण ऐसा

घर घर धूम जो छाए, बाग भी बंस लंका को जारा, जा सागर तीर पूछ बुझाए। अब तू क्या दरे मदोदर रानी, पी हर दू पहचान, मैं लड़ने से

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम, तुम।
0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

एक बार बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। डियर डिवोटीज सीताराम शुभ स्वागतम। वेलकम टू टीवी एंड रेडियो जागृति एज वी वेंटियर टुनाइट इन ए वंडरफुल डिस्कोर्स ऑन प्रवचन। सो प्लीज wherever you may be located, whichever part of this universe that you may be in at this time, we offer to you a most cordial welcome as we prepare to deliver to you a wonderful katha. So we clasp our hands together as we will offer praises to the divine. Om Sri Ganeshaya Namo Nama, Sri Saraswatiye Namo Nama, Shri

कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सर्वामङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोस्तुते। ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। नीलं भुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पार्णो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम मनोज

इन्द्रयं बुद्धिमतांग वरिष्ठं वतात्मजं वानरयूथ्य मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदेम।

हरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एक बाल बोलो शिव शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सो डियर डिवोटीज, सीताराम वंस मोर एंड वेलकम टू प्रवचन। आई एम पंडित कपिल देव महाराज एंड इंडीड हैप्पी टू बी हियर दिस इवनिंग टू शेयर इन दिस वंडरफुल डिस्कोर्स दैट आई हैव प्लान्ड फॉर यू। सो व्हाट डू? वी make all the necessary arrangements, we prepare ourselves, we sit in a comfortable position as I share with you these lovely teachings from the Sri Ram Charitramanas. So first, before we go into the golden pages of Sri Ram Charitramanas, we will all join together in the Sumiran. Om Sri Ram Jai Ram जय जय राम। जे ही सुमिरत सिद्धि हो गणनायक

राशि शुभ गुण सदन मोख होई वाचा पंगोचर है गिरिवर गहन जासु कृपा सुदया

जनयन करउ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंड इंदु समदेह उमर मन करुणा आयन।

कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार सिया पति राम चंद्र जी की जय शरणम श्री राम जय राम जय राम बोलिए प्रभु

एक बाल बोलो श्री भगवान की जय. सो माय डियर डिवोटीज, वेलकम बैक. एज वी कंटिन्यू विथ अवर लवली डिस्कोर्स विथ दिस डिस्कशन बिटवीन सती जी एंड भगवान शिव, सती द डिवाइन स्पाउस ऑफ भगवान शिव, अबाउट दिस इन्विटेशन दैट रीच एवरीवन एल्स एक्सेप्ट लॉर्ड शिव एंड मदर सती. बृहस्पती हसन हमसन दुख माना, ते ही ते अनुज करही अपाना. नव विनु बोले जाहू भवानी, रहयन शील स्नेह न कानी. जय